0: The update of the week. You are connected to Maputo Corridor Radio 105.9 FM, and we are talking today about the movies that are going to be, you know, bringing you excitement throughout the week. Let's leave The Polygamist, which is a series that people have been talking about. Well, we're having a conversation about that next week with Ibrahim Delifan. But in the meantime, let's talk about the movies that are making Mozambique today. We have four movies, and funny enough, Michael is still showing in Maputo City. Well, but today we are talking first about Cocktail 2, an Indian movie.
1: कोई भी रिश्ता जब नया होता है ना, exciting होता है क्योंकि वो नया होता है. नए दोस्त मजेदार लगते हैं क्योंकि उनकी कहानियां हमारे लिए नहीं होती. पुराने दोस्तों की वही कहानियां सुन सुन के हम पक जाते हैं. लेकिन प्यार उस फटी हुई टी शर्ट की तरह होता है जिसमें हम रोज रात सुकून से सोते हैं. और जब प्यार दोस्ती बन जाता है और दोस्ती में प्यार का रंग मिल जाता है, तो इससे बचने का एक ही सोल्यूशन है.

0: hat for your handsome boyfriend.
1: No, I'm not her.
2: तूने तो ऐसे रिया किया जैसे तुझे किसी ने गाली दे दी हो, इतनी बुरी हूँ मैं।
3: मैंने तो ये सोच के कहा था कि कहीं तुझे बुरा ना लग जाए।
0: पता नहीं मैं तेरे लायक भी हूँ या नहीं।
2: है प्रॉपर्टी मैन के कौन से होते हैं?
0: तो वैसे ही
2: ट्राई करना। योर गर्ल्स एंड योर बॉयज विल थैंक यू। बेबी यार इट्स टू लेट।
3: मैं तो सिर्फ अपने बॉयज को थोड़ी फ्रेश एयर दे रहा था।
2: रियली
3: व्हाई नॉट।

0: Well, dear listener of Maputo Caribbean Radio, welcome one more day here in the space of the movie update of the week. You are connected to Maputo Caribbean Radio 105.9 FM, and we are talking today about the movies that are going to be, you know, bringing you excitement throughout the week. Let's leave The Polygamist, which is a series that people have been talking about. Well, we're having a conversation about that next week with Ibrahim Delifan. But in the meantime, let's talk about the movies that are making Mozambique today. We have four movies. And funny enough, Michael is still showing in Maputo City. Well, but today we are talking first about Cocktail 2, an Indian movie.
1: कोई भी रिश्ता जब नया होता है ना, exciting होता है क्योंकि वो नया होता है. नए दोस्त मजेदार लगते हैं क्योंकि उनकी कहानियां हमारे लिए नहीं होती. पुराने दोस्तों की वही कहानियां सुन सुन के हम पक जाते हैं. लेकिन प्यार उस फटी हुई टी शर्ट की तरह होता है जिसमें हम रोज रात सुकून से सोते हैं. और जब प्यार दोस्ती बन जाता है और दोस्ती में प्यार का रंग मिल जाता है, तो इससे बचने का एक ही सोल्यूशन रह जाता है.

0: hat for your handsome boyfriend.
1: No, I'm not her.
2: तूने तो ऐसे रिया किया जैसे तुझे किसी ने गाली दे दी हो, इतनी बुरी हूँ मैं।
1: मैंने तो ये सोच के कहा था कि कहीं तुझे बुरा न लग जाए।
0: पता नहीं मैं तेरे लायक भी हूँ या नहीं।
2: है कपड़े पहन के कौन सा होता है?
0: तो वैसे ही
2: ट्राई करना। योर गर्ल्स एंड योर बॉयज विल थैंक यू। बेबी यार इट्स टू लेट।
1: मैं तो सिर्फ अपने बॉयज को थोड़ी फ्रेश एयर दे रहा था।
2: रियली
1: व्हाई नॉट।

0: मैंने तो ये सोच के कहा था लेकिन तुझे बुराने लग जाए।
1: पता नहीं मैं तेरे लायक भी हूँ या नहीं।
2: है प्रॉपर्टी मैन के कौन से होता है?
1: तो वैसे
2: ट्राई करना। योर गर्ल्स एंड योर बॉयज विल थैंक यू। बेबी यार इट्स टू लेट।
0: मैं तो सिर्फ अपने बॉयज को थोड़ी फ्रेश एयर दे रहा था।
2: रियली
0: व्हाई नॉट।

0: We're having a conversation about that next week with Ibrahim Dilifan. But in the meantime, let's talk about the movies that are making Mozambique today. We have four movies, and funny enough, Michael is still showing in Maputo City. Well, but today we are talking first about Cocktail 2, an Indian movie.
1: कोई भी रिश्ता जब नया होता है ना, एक्साइटिंग होता है क्योंकि वो नया होता है. नए दोस्त मजेदार लगते हैं क्योंकि उनकी कहानियां हमारे लिए नहीं होती. पुराने दोस्तों की वही कहानियां सुन सुन के हम पक जाते हैं. लेकिन प्यार उस फटी हुई टी शर्ट की तरह होता है जिसमें हम रोज रात सुकून से सोते हैं. और जब प्यार दोस्ती बन जाता है और दोस्ती में प्यार का रंग मिल जाता है, तो इससे बचने का एक ही सोल्यूशन रह जाता है.

0: hat for your handsome boyfriend.
1: No, I'm not her.
2: तूने तो ऐसे रिएक्ट किया जैसे तुझे किसी ने गाली दे दी हो, इतनी बुरी हूँ मैं।
1: मैंने तो ये सोच के कहा था कि तुझे बुरा ना लग जाए।
0: पता नहीं मैं तेरे लायक भी हूँ या नहीं।
2: है
3: कपड़े पहन के कौन सा होता है?
0: तो वैसे ही
3: ट्राई करना। योर गर्ल्स एंड योर बॉयज वेल थैंक यू।
2: बेबी यार इट्स टू लेट।
1: मैं तो सिर्फ अपने बॉयज को थोड़ी फ्रेश एयर दे रहा था।
2: रियली
1: व्हाई नॉट।

0: hat for your handsome boyfriend.
1: No, I'm not her.
2: तूने तो ऐसे रिएक्ट किया जैसे तुझे किसी ने गाली दे दी हो, इतनी बुरी हूँ मैं।
1: मैंने तो ये सोच के कहा था कि तुझे बुरा ना लग जाए।
0: पता नहीं मैं तेरे लायक भी हूँ या नहीं।
2: है
3: चौपड़ी बहन के कौन से होते हैं?
0: तो वैसे
3: ट्राई करना। योर गर्ल्स एंड योर बॉयज विल थैंक यू।